गल दे नाल लगाया ते गल दे नाल लगा के कहन लगे ओ सुजान चंद ओ सुखा तेरी सेवा परवार। एक समा सी असी तेनू कहा सी दौड़ जा पर तू सेवा इतनी कीती अज तेनू लैण वास्ते आए हैं अपने नाल लैके आनंदपुर साहब आए और इतने दयाल हो गए अमृत तैयार किया सुजान चंद नू अमृत छकाया और नाम वैद सुजान सिंह रखिया। आओ भाई जीउंदे तो असीं सारे हाँ पर असल च जीना उस दा है जिहड़ा नाम जपदा है जिहड़ा नाम दूसरे नू जपांदा है जिहड़ा भला करदा है और भला मंगदा है असल च जीना उस दा है। आओ खालसे दा 300 साल साजना दिवस मना रहे हाँ तां भाई बेअमृती रह के ना बताइए जिन अमृत छकिया है रहत विचाओ जिन्ना नहीं छकिया वो अमृत छको और गुरु वाले बनो।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वेष आ गई, इहनूं इह पता लग गया।

चार कुरैता छड़ देन ते पांच ककारा विच पक्के हो जान रैत रखन वंड के छकन

कोई गरीब है, गरीबी घर विच एडी एडी है कि अपने मोढ़ियां तो भी उची हो गई है। ये जो गोलक है, ये गुरु घर की जो माया है, ये इना गरीबां वास्ते, मजलूमां वास्ते, लंगर वास्ते, जो पीड़ित लोग हैं, ये सत्संग जीओ, ये जो गोलक है,

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले पास्यों शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नूं डराउण दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित

सानू वस्तु मिल जाए फिर साझा बैठ गया सब नाम को कीता सब कीर्तन कीता से सुनिया सब लाभ हो जाएगा। करो अरदास जिन्हें धरती में पुटी है उन्हें पानी जरूर मिले, जिन्हें धरती को पुटी है उन्हें पानी मिले, जिन्हें खोजे है उन्हें मार्ग मिले। जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਵਧੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰ

तीर्थ निर्मल कीरा आनंद गुणि गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी प्रधान के ये समूल वस्तु का मुल पद इस वस्तु का मुल पद पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं होता जिन्होंने कीर्तन को रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरिया मालिक पर मरदानिया यह की है महाराज एक सौ रुपये भी है अरुण कह लगे आपा की करनी है मरदानिया जा वापस दे महाराज अहू बना के मरदाने ने कहा सदगुरु मसा मसा माया का मुंह वेखे है तुम कहते हो वापस अदूर कह लगे मरदानिया आपा इन किसे चुकी फिरानी मरदाने ने कहा महाराज तुम थोड़ो चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावा हम थानू कद नहीं कहोंगा महाराज भुख लगी अदूर कह लगे जी मरदानी असि मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले चू न बंदे पंछी से दरवेश और जिन्होंने तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांठनी बंधते जमे देवता खाए गोविंद ताके पीछे फिरे मत भूखे दे जाए एक सौ रुपये की शैली वापस दिखती सात राज होर प्यार आया नौकर नु बुलाया धक्का कोई रबी दूर आया है कोई सौ सौ के मन धरे है प्रसादे का थाल परोसना मिठाई भी रख लै दुध का गड़वा भी भर लै किता रुमाल पा के तू चल मैं दुकान बंद करके आना हाँ उस दादे के दर्शन करना अगर कम पहुंच गया सरवा दिन के पदार्था का थाल रखिया मथा टेकिया हजूर ने अमीर दृष्टि तकिया सिर को नजर करम तिरकार नानक नगरी अगर कह दिया झोलियों पर उठिया मस्ती बैठा चाहते इधरों सारे भी आए अदूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया को उतारने वाले दुनिया को दाता देने वाले मेरी झोली ठीक है अदूर कह लगे सारसराय की चाहना है साक्षा दुनियावी दाता सारी है हीरे दान पन्ने पुखराए धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं हो रहा खुद ही बने मन नहीं रखे मन संतुष्ट नहीं हो मन को संतुष्टि नहीं हजू कह लगे हां सारसराय मन का भोजन हो रहा है मन ये नाल नहीं रहना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रहना गरीब नवाज फिर करो कृपा अदूर ने सोचिया जरा तकी अंदरों बोलता है कि भर अदूर कह लगे सारसराय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर ले महाराज फिर मैं अदूर कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर के चरणा से है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निम्रता लेके होवे तो नहीं पर सारसराय का जरा मन रूपी चोलिया सी वो बिल्कुल सुधैर अंदर श्रद्धा से प्यार सी रो पिया हरी परिवार यह तो मेरा बच्चा है पर जे तुम आखो तो मैं थोड़े कुत्तिया ने पैर से मना से पिया तो दास बख्शो जेदे नाल तेरे मन से भुख दूर हो जाए अगर मैं बख्श पीती सारसराय जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुम्हें भी मन करते मेरे हो जाओ बख्शिश होने लगी है हजूर ने सारसराय के सिर से फिर प्रयास रखिया अभी उसकी की नाल तकिया सारसराय जब सतनाम कर हुक्म मस्तक हाथ विचो मार कड़िया बड़िया सह सुखे नाम नाम की दात जो जो सारसराय सिमरन नाल जुड़ता है त्यों त्यों मन सुखी होता है सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन हुए निहाला चरण कमल तेरे तोरे तो सीमा मेरा सदगुरु जी तो अज सारसराय दिन झोलियों पर दिखिया मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना भरे अज खास पूर्णमाशी का दिन आखो स्थिति भरे सारसराय दिन झोलियां भरिया गई थोड़े उत्ते ही रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अनेरे को दूर कर दी जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी झोलियों पर तो आओ प्यारी आज संगत आप अनुभव करें।
സർവത്മായി സായി അമൃതേവിയായി.

जे लोड़े सदा सुख भाई, साधु संगत गुरे बताई। निशानी की है, नकली भी बड़े हैं। निशानी की साधु की।

0: की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ।
1: जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा है, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड़।
0: कबीर साधु की संगत रहो, जौ

दुख दार सुख रोग भया जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही जाऊं करी ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा हो। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर आ। तू सच्चा साहेब।

हर जन केवड़ भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नी आए, त्रिग जीवै त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई।

से जन युग में सुखवासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन हर निर्भो ध्याया जी तिन का भौ सब गुवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप

अनेक पढ़े वो सिमरत शाशत जी कर क्रिया खट कर्म करंता छे भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरम।

ताकों कर पाहन अनुमानत, महामूल किछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत ने भव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई रूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत पुज खान बहोर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट प्यो शंकर कैठा, सगरी सेट दिखाए अचंभव, आद जुगात स्वरूप सी अंभव, आवर इच्छा मेरी तुम करो, शिख उबारा शिख संघरो, दुष्ट जीते उठवत उत पाता, शकल मलेश करो रण गाता, जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत।

होय तैं सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दिन जाय निहर हो ताकै ताप तनक मो हर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई।

परमेश्वर नु भी कई नाम देते और तीरा तुफंगा नु भी पीर किया। साहब जी कहते ने तीर भी तू ही है, सैती भी तू ही है, तू ही तबर है, तू ही तरवार है, के तू ही तील है, तू ही बरछी है, तू ही तबर है, तू ही तलवार।

गोबिंद सिंह जी महाराज की भूआ लगते सन। संगोशा युद्ध करदिया शहीद होया ता सतगुरु जी ने उस वेले ओ नजारा थक के

तू हाथी दा मुकाबला करना है। भाई बचित्र सिंह चेहरे ते जलाल चढ़दी कला वाला सिंह शरीर मजबूत अखां विच नाम दी लाली हाथ जोड़े

जिन्हें दोनों पैर अगले चुके हुए ने। भाई बचित्र सिंह ने एक हथ नाल घोड़े की लगाम फड़ी, दूसरे हाथ दे नाल ओ नागनी फड़ी हुई है और जोर दी वगा के एक जकारा छड़ के ओ नागनी मस्त हाथी दे सिर विच मारी, ओ लोहे दा तवा पा।

हाथी जद भज गया ते हुण जेड़े अगे दुश्मन लड़न वास्ते तैयार खड़े ने उन्हां वल होए ने हुण चार चफेरियों लड़ाई शुरू हो गई। इन्हां सिंघां ने अनेकां नूं शहीद कीता। हैरान हो गए राजे।

छल फरेब ना करो, एक परमेश्वर की आराधना करो, तो फिर देखो तुहाडी किस तरह जित होवेगी। ते कहंदे ने इहो ही उपदेश साहिबां ने सारिआं

और सुधार हरी सिंह नलवा, सोने दाड़े चमकदे चेहरे शस्त्रां नाल सजे हुए सिंह घोड़िया ते सवार जद इन अफगाना

मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना हुंदा ना ओ उथे इक नजर ते ही मन जांदा, पहली नजर ते ही मन जांदा। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इत्थों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गादर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पावन।

फल लगता है टैणी नू, ओ टैणी उतनी चुकदी चली जाती है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा की गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए। सत्संगत बोलो श्री, जो कोई भी भाई गुरु नानक दे दर की सेवा करेगा, मन करके नितनेम बाणी पढ़ेगा जपेगा, आख्या सारे फलां दी उसनु प्राप्ति होवेगी। नितनेम विच भाई फर्क ना पवे, इस वास्ते बेशक चख

परम सत्कार योग साहब आओ सारे प्यार नाल पहला वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करिए जुड़िए गुरु नानक के चरणों विच आप वड्डियां भागां वाले हो जो अमृत वेले तो इस वेले तक सतगुरां की पावन पवित्र गोद विच बह के आ रस मान रहे हो ये वड्डियां भागां करके नसीब हुंदा है। सो हुक्म होया कि पहले वाहेगुरु शब्द का उच्चारण करवाओ। सो सेवक की आवाज जिथों तक पुज रही है सारे प्यार नाल जपो, कोई भी रसना नाम जपन तो वांझी ना रह जाए।

कृपा मुहे करो। एक साखी है सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी। वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेन इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कैर करन लगे हो, इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा है, दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ए ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर दे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो तेरे बख्शिया ओदे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त।